0: ते ना कोई मरा
1: मैं कवरा है चिते हूँ
0: आता हुआ ना ते ने वो या तने
1: मैं कहा ना तो ता तो चुकू
0: क्या रहा माय डार्लिंग
1: मैं पिकी या केरा ते तो माता
0: मैं ता तो ते अंगा फका मुआ नहीं
1: फाया ते ओरा
2: Ko te reo o Shea Milne-Tera, me tāna waiata ko whai a te oranga. Ngā wari noa te whakarongo nē, ka whakakapi I tēnei puhi ki tētahi atu hātere. Rangatahi tonu ana te kai waiata, ko Renzo tōnei ngua. Nā tēnei waiata ia I rongo nui ai, I te tau e 2021.